भूतं अमर भीरधाम का परातम कुमार धनंदीर बलंगादेश पोपो हनुमंता देवता प्रभाकितो भांदुं को भांदुं जावरास्ती भांदुं सर्पगण फुले भांदुं नक्तल सत्या भांदुं और रात्रि राग मदन मोहिनी इन्हीं खंडुरे जाला खंडुरे मल खंडुरे सेंडस लंग पल पल वरा वरा कामिनी मदन किनी आउट वाह काम किनी मगरु आस्तियों नंगे चलित करो।

भैया की दादा मेर की मुस्को डोला की बीमोरी बाजे की जीस तुरो टारुवी लगा सी गिले आप हाथ टारुवी लगा सी गिले आप